0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: I feel great about the progress that we made over the last couple of days. We're looking forward to going back home. It's been a very long day. I know the reporters had a long day as well, so I appreciate you guys. But look, the fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. We feel great about that. We're working with our allies, from the Israelis to the Gulf Arabs, to make sure that sticks. And we feel very, very good about where that is. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster those inspection regime to make sure they can never have a nuclear weapon. And finally, we continue to make progress on these technical negotiations. We left a lot of our team. The Iranians left a lot of their team at the resort there to keep on working at it. So all in all, a very productive 36 hours. We're going to have to keep working it. The last point that I'll make is, as I told you all this morning, this is laying a foundation for what could be a truly transformed Middle East. But we haven't built the house yet. We're going to have to keep on building, and that's what we'll do.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
4: Special investigation team probing the alleged donation theft at the Ayodhya Ram Mandir has submitted its preliminary report to the Uttar Pradesh government. The SIT has flagged serious concerns over how donations were counted, monitored, and safeguarded. And that has turned this into more than just a case of missing cash or jewelry. It is a question of trust. Every rupee dropped into a donation box is an offering made in Aastha by devotees who believe it will reach Lord Ram. But it's not reaching him. Now, as legal scrutiny intensifies and a political battle erupts, a larger question is being asked. If questions are being raised over the handling of donations at one of India's holiest places, who will answer for the faith of the devotees who made those offerings? Before I bring in my special guest, Faizabad Member of Parliament Avadesh Prasad will be joining me shortly. Here's a report.
5: Questions over donations made by devotees at the Ayodhya Ram Mandir are now at the center of a major legal and political storm. The special investigation team probing the alleged donation theft has submitted its preliminary report to the Uttar Pradesh government, raising concerns over the system used to count, monitor, and safeguard temple offerings. Investigators have also examined how personnel responsible for counting the donations were selected. As per the report, gross negligence was also found during security checks and frisking of employees during arrival and departure from duty. Employees handling cash were allegedly not screened properly. As per SIT, the dress code for employees counting cash was also not enforced strictly. Employees were even seen standing in front of cameras to hide the theft. SIT probe also observed negligence in transportation of donation boxes from the temple premises to the final deposit of cash in the bank. Sources indicate that no individual has been given a clean chit in the investigation so far. A member of the SIT has confirmed in an exclusive conversation with India Today that further action will be determined after the report is examined at the government level.
6: मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है और अभी भी जांच प्रचलित है और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकेंड पार्ट में जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा उसमें सबमिट करेंगे.
5: Meanwhile, a PIL filed in the Apex Court has sought a CBI-led SIT probe into the handling of the donations. The plea demands registration of an FIR, a time-bound investigation into alleged financial irregularities, and a probe into possible embezzlement or corruption. The petition argues that transparency is essential as the donations are linked to the fate of crores of devotees. The controversy has sparked a political slugfest. Opposition leaders have targeted the BJP government, questioning who is being projected and alleging that Lord Ram's name is being used for political gains.
7: Ram ke naam par vyapar karne wale log hain, jiska natija 24 ke chunav mein inko mil gaya. Inko mil gaya. Uttar Pradesh mein haare hain. Lok Sabha ke chunav mein haare hain. और अब 6 महीना रह गया चुनाव का तो ये भी जान रहे हैं अब इनकी करारी हार होगी इसलिए डिस्टर्ब चल रहे हैं बाबा.
5: योगी आदित्यनाथ हैज अर्ज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेविटीज नॉट टू ड्रॉ कंक्लूजंस बिफोर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड सेइंग द प्रोब विल रिवील द ट्रूथ.
8: अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी करके रहेगी उसमें कोई संदेह नहीं.
5: The SIT's preliminary findings have shifted the focus from alleged theft to the systems meant to prevent it. As the government examines the report, the focus is on accountability in the handling of donations at one of the country's most revered temples. Bureau Report, India Today.
4: And joining me now is Avadesh Prasad, Member of Parliament of the Samajwadi Party of Faizabad. Avadesh ji, hamare saath Ayodhya se jud gaye hain. Avadesh ji, एसआईटी ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है और बहुत सारे सवाल उठाए हैं. मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, दान राशि की गिनती पर गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि सबसे पहले इस पूरी गड़बड़ी का आरोप आपकी पार्टी ने लगाया था. आप इस जांच को किस तरह से देखते हैं?
7: देखिए, ये जग जाहिर है कि इस मामले को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है. ये कोई पार्टी का मामला नहीं था, बल्कि ये देश के करोड़ों प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान लोगों से जुड़ा सवाल था, जो प्रतिदिन बहुत दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में आते थे और प्रभु के दरबार में माथा टेकते थे और अपने सिद्धानुसार चढ़ावा चढ़ाते थे
4: जी.
7: इस चढ़ावे में देश के राष्ट्रपति से लेकर एक ठेला वाला खुंचा वाला भी चढ़ावा चढ़ाया. मैं तो अक्सर जाता ही रहता हूँ, महीने में दो बार हम तो पैदे हुए हैं, हम तो अपने भाग्यशाली मानते हैं, हम भी कभी हमने भी चढ़ावा चढ़ावा अपना श्रद्धा अनुसार चढ़ावा का इतना नहीं कितना दिया। चढ़ावा का सामने वो आस्था से जुड़ा होता है, आस्था तो लगाव है। तो इसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के करोड़ों करोड़ों आस्था रखने वाले प्रभु श्री राम से, उनके आस्था से जुड़ा था ये, उनके आस्था की चोरी नहीं डकैती हुई। लेकिन अफसोस है कि आज 15 दिन से ज्यादा हो गया और SIT का गठन भी हुआ, सरकार ने गठन कराया। SIT ने सुनते हैं अपना कुछ रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रसिद्ध किया, लेकिन ना तो कहीं पर FIR हुई है ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तो कानून का राज में, हमने तो कानून पढ़ा भी, हम तो वकील भी रहे हैं, अगर किसी के ऊपर इस तरह से है एलिगेशन है और सबूत है और रिकवरी तक है, तो मैं समझता हूँ उसमें कानून के में तो कहीं ऐसी छूट है नहीं कि उसके ऊपर FIR न की जाए, उसको गिरफ्तारी न की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है
4: जी। लेकिन अवधेश जी, इसमें जो SIT की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे है कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है और आगे की कार्रवाई अब तय की जाएगी। आपको लगता है इस अभी इमीडिएटली FIR हो जाना चाहिए, क्या इसमें FIR फौरन होना चाहिए?
7: निश्चित तौर से, ये हमें नहीं लगता, ये देश के करोड़ों करोड़ों केवल आस्था रखने वाले नहीं बल्कि देश के तमाम करोड़ों करोड़ों लोगों की जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा है, उनको आश्चर्य भी है कि सब कुछ हो गया, चीजें बरामद भी हुई हैं, खुलासा भी हुआ है, रिकवरी भी हुई है, इंस्पाइट ऑफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जिज्ञासा देश की है, ये जिज्ञासा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर रहने वाले अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों की यह जिज्ञासा है, अयोध्या की जिज्ञासा है कि आज तक इसमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई
4: जी। क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और SIT की रिपोर्ट में कुछ जो जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाया गया है, उनके कार्यशाली ऑपरेशन में सवाल उठाए गए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? क्या आपको लगता है जो पूरा मंदिर परिसर का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दान गिनने की प्रक्रिया है, उसको बदलने की जरूरत है? ये क्लीन अप कैसे होगा?
7: ये तो है, ये तो सारी बातें ही हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण में भी उसमें भी बताया गया कि कमीशन खोली हुई है, चीजों खरीदे बुरीदे में हुई है, जमीन में खरीदने में हुआ है, तो कहीं कोई बचा नहीं है, चाहे वो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो, चाहे चढ़ावे की हो, चढ़ावे में चाहे सोना हो, हीरा जवाहरात हो, चाहे पैसा हो, चाहे चांदी हो, जो भी हो, चाहे हार हो, ये तमाम चीजों पर है। और ये किसी बाहरी लोग तो उसमें जिम्मेदार है नहीं, जिम्मेदार तो जो सरकार की तरफ से वो गठन किया गया है वो वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं, उन्हीं के सामने चढ़ावा होता है, उन्हीं के सामने चढ़ावा गिनती होती है, उन्हीं गिनती करके बैंक में जाता है, तो इसमें तो विलंब हो रहा है।
4: मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि एक नंबर अगर आप बोलेंगे कि कितने की गड़बड़ी हुई है, क्या आपका अनुमान है? क्योंकि आप फैजाबाद के MP हैं, वहां के लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है, तो कितने का अगर कोई अमाउंट आप बोलेंगे, कितना पैसा लूटा गया है, कितने की चोरी हुई है?
7: ऐसा है, कितने की चोरी हुई है इसके बारे में तो ना हम कभी वहां काउंटर पर रहे, गिनती में रहे, ना नजदीक में रहे, तो ये बात तो एसआईटी टीम जो है गठित थी, जो जिसमें ये टीम की जिम्मेदारी होती है कि अब तक प्रारंभिक जो जांच रिपोर्ट देने वाले हैं उसमें कम से कम तो बता देते। तो ये तो हम तो ये देखते हैं कि प्रभु श्री राम के लोगों का, अयोध्या के लोगों का, कितने लोगों घर गिराया जा रहा है, कितने लोग जमीन मुआवजा नहीं दिया गया है, कितने लोगों 1400 परिक्रमा पे जमीन जबरिया ली जा रही है, कितने लोगों को उजाड़ा जा रहा है, ये सब कामों में लगे हैं। महंगाई है, लोगों को शादियां नहीं हो रही थी तो वो गैस का प्रॉब्लम था। हम तो लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान करने में लगे हैं, और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, मर्यादा की रक्षा हो सके, हम तो उस पे लगे हुए हैं। दान में कितना चढ़ावा हुआ, क्या हुआ, इस पे कभी हमारी नजर नहीं गई, ना हम उसके समीप गए।
4: क्या आपको भरोसा है कि जो एसआईटी की जांच है उससे पूरा सच सामने आ जाएगा?
7: अब देखिए, इसमें अंदाज से तो कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये मामला बड़ा था, बड़ा इस सेंस में कि ये राष्ट्र का मामला है और प्रभु श्री राम के मंदिर का है। प्रभु तो विश्वव्यापी हैं, प्रभु तो सबके हैं, और उनके दरबार से, उनके मंदिर से चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, और देश के तमाम लोग आते हैं, तो इसकी सही माने में, हमारी माने तो इसकी जांच जो है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा या टीम द्वारा होनी चाहिए थी, और जांच के पहले जो भी उसमें ट्रस्ट में हैं उनको अलग कर देना चाहिए, उनको उसमें दूर ही रखना चाहिए था, तब जांच ठीक से हो जाती और जांच प्रभावित करने का कहीं दूर दूर तक, कोसों दूर तक किसी को संदेह नहीं।
3: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
9: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: And we're shifting focus now to this horrific story from the state of Maharashtra, where a shocking twist has been reported in the Lohagarh Fort death case in Pune. Well, what was initially treated as an accidental fall has now been declared a murder case by police. Investigators have alleged that 27-year-old Ketan Agarwal was killed in a pre-planned conspiracy involving his fiancée Sia Goyal and her boyfriend Chetan Chaudhary. According to the cops, the alleged plot was first conceived during a trek to Lohagarh Fort in the month of May. Investigators claim an earlier attempt to kill Ketan had failed, following which he was allegedly lured back to the fort for another trek earlier this month. Police say Ketan was pushed into a 400-foot gorge and that was made to appear like an accident. The investigation has also brought under scrutiny Sia's emotional social media posts after Ketan's death, with police examining the digital trail as part of the probe. Both Sia and Chetan have now been sent to 7-day police custody by the Wadagaon court.
1: आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है. मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है. देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ. उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी.
2: बघून अपघात आम्हाला सुद्धा वाटलं नाही की ते अपघात आहे या घात आहे. आम्हाला पण अपघातच समजत होतो आम्ही. पर जेव्हा ते जी बॉडी घेऊन पोलीस आले, त्यावेळेस सियाचा कसलाही रिॲक्शन नव्हता. जसं एखाद्या मुलीचा अगर खरा खरा नवरा वारतो तर त्याला काही दुःख होतो, त्या दुःखासारखं त्याचं काही नव्हतं.
3: सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है, और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है. इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है. मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया. मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय हो के इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो. बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को, मौत की सजा हो.
4: It was clear, and after in the further interrogation of the suspects, they admitted that they had conspired together to kill the boy named Ketan Agarwal. So on 18th, before Ketan Agarwal and Sia Goyal reached the fort, Chetan Chaudhary was himself present at the fort itself, and when they went upstairs, he went after them, and they together pushed him down the fort, which caused his death.
5: We strongly opposed the police custody, and considering our arguments, the honorable court granted 7 days police custody to both them. As per the papers, as per the FIR, the case of the police was that this person, this complainant's son, has been murdered by conspiracy,

0: And we have some news coming in from Mumbai city at this point in time. A tree has fallen on a car in Mumbai. The tree crashed amid heavy rains and thunderstorm. Take a look at these images on your screens at this point in time, where on camera, heavy damage to the car can be seen as the tree fell. Monsoon has hit Mumbai, and so does the mayhem, almost synonymous with monsoons in the maximum city. Intense spell of rain has flooded Mumbai city. Orange alert for rains in Mumbai and in Thane. Images are of a tree that came smashing down on a vehicle that was parked on the road. Mustafa has more. Mustafa, these images are from Dadar, I understand. Tell us about the occupants of the car. Are they okay? What's going on here?
1: Well, yes, the car was parked when this incident took place. And if you see the collapsed site, it seems that the foundation on which this tree was there, the pavement on which this tree was there, so that has lost mud, and due to which it has fallen, and the tree has fallen on the car. So thankfully, as of now, there are no injuries reported because the car was stationary parked besides the tree on the road. But these incidents in Mumbai raise a lot of concern among walkers, among residents who use footpaths. There is always an exercise carried out by the BMC to trim the trees which are on the road, but somewhere the trees which are losing soil, which can fall anytime, and the new construction or cement construction which happens around the tree roots somewhere decays the entire tree, and that's why this incident takes place. So yes, heavy rainfall reported last night. Incidents related to it, be it landslide, tree falling, traffic, is something which the Mumbaikars have started.
0: Yeah, I'm going to thank you for the moment. Getting in those details is my colleague Mustafa Sheikh. They're reporting from Dadar in Mumbai. As you can see in these pictures, monsoons have hit Mumbai, Maharashtra. But images of, in fact, devastation already surfacing. A tree has come crashing down on a vehicle that was parked. But Mustafa is, of course, telling us that nobody has been injured in this incident. Heavy rain lashing Mumbai through the night as well. The southwest monsoon intensified over the city a day after making its onset over the financial capital of India. Several areas witnessed waterlogging following overnight showers. Andheri subway was completely submerged amid the rains. BMC officials were stationed at the site to stop vehicles from entering. Authorities have urged residents to exercise caution as more rain is expected through the day. Train services on several rail corridors have been suspended after the heavy rains. Severe waterlogging was witnessed at the railway tracks here. The maximum city's drainage system is once again under pressure. The BMC has deployed teams across low-lying zones with pumps working round the clock. However, the first showers have exposed the preparations of the civic body for the monsoons ahead, as you can see clearly.
2: Mumbai is hit by the monsoon, and now IMD has officially announced that monsoon has arrived in Mumbai. It was raining from yesterday in Mumbai and in adjoining areas of the Mumbai MMR region like Palghar, Thane, Panvel, Navi Mumbai. But today officially announced by IMD that Mumbai has been hit by the monsoon, and this is the first monsoon, and we are right now at the Gandhi Market, which is a most low-lying area of the Mumbai, where water logging can be seen in the very first train. BMC is trying to drain this water out, but as we see every year, BMC has not been succeeded till now. Heavy rain continues, then definitely more water logging can be seen on the roads of the Mumbai. And as you can see, people have to pass through this water only. They have to go through this water, and we are right now walking in this 2 to 2.5 feet of water. As you can see, roads have been closed for the safety precautions. BMC employees, Mumbai police employees are here to tackle the situation, and vehicles, BST buses or railway transport is running smoothly as of now as per the officials of the respective departments. But we have to see that what will be the how will rain occur in Mumbai in this next coming time. With camera person Ashish Dhamapurkar, this is Dipesh Tripathi for India Today.
0: More news coming in. The Punjab State President Naman Arora's statement on the Gurugram police action that we've been reporting on as far as the sacrilege row is concerned. Haryana is governed by the BJP. He says the Haryana police is under its control and the entire administration answers to it. They can do whatever they want, initiate any inquiry they choose and make any allegation that they wish to, is what is now being said by the AAP in the defense of the Punjab Chief Minister. If the BJP is genuinely interested in uncovering the truth, why is it not investigating who created the video, who acted in it, who financed it and who was responsible for circulating it? Punjab knows the person seen in the video was not Chief Minister Bhagwant Mann. Had there been any intention to secure a favourable forensic report, it could have been done through any lab in Punjab. But law and order is under our government. The fact that this was not done clearly shows the objective was to obtain an impartial assessment of this video.
3: ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੈਬਸ ਰਹਿਗੀਆਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਬਸ ਰਹਿਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੈਬਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈਬਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ
4: मुख्यमंत्री की वीडियो के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब जांच के दायरे में वो सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं जिन्होंने जाके सारी सेटलमेंट की और इस मामले को क्योंकि सीसीटीवी हो होटल के बिल हो या कौन ऑफिशियल्स हैं अकाली दल ने क्योंकि इसको सबसे पहले उठाया विक्रम मजीठिया लगातार ट्वीट करते आ रहे हैं हमारे साथ हैं सर ये आपने सीसीटीवी ट्वीट की आप कह रहे 3004 कमरा था जहां स्वपन शर्मा रुके तो ये अब आप इसको कैसे देखते हैं बिकॉज सरकार तो एग ऑन द फेस एंड बैकफुट पे
5: यू नो पंजाब सरकार और पंजाब का मुख्यमंत्री ये लोगों का होता है लोग इनको चुनते हैं लोगों के वास्ते ये बने हैं और सच्चाई सामने रखना पुलिस का काम होता है नगर अगर पुलिस कानून तोड़ने लग जाए पुलिस 420 करने लग जाए तो बहुत बड़ा सवाल डीजीपी पंजाब गौरव यादव पे उठता है और पुलिस पे उठता है और इस बात का दूध पानी का पानी हो गया इन ब्लैक एंड वाइट ये बात सामने आ गई है और बात इसमें दो तीन बड़े इश्यूज हैं एक तो हमारी आस्था की बात है हम सब जितने पंजाबी हैं हम गुरु चरणों में मत्था टेक के अकाल तख्त साहब से अपनी शक्ति लेते हैं मीरी पीरी की वो श्री हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का वो तख्त है छेवें गुरु का उस तख्त साहब के साथ मत्था लगाना तख्त साहब के पास जो वीडियो थी उन्होंने कहा कि आप इसको वेरीफाई करा लो किसी सीएफएसएल की लेबोरेटरी से इन्होंने नहीं कराई जब उन्होंने करा ली देखो क्यों वीडियो वेरीफाई करानी जरूरी थी क्योंकि आप गुरु साहब की स्वरूप पे तस्वीरों पे शराब छिड़क रहे हो
6: तो ये सब इन्होंने कोई वीडियो जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जी की वो थी उसमें उन्होंने कुछ एआई जनरेट करने के लिए फर्जी तौर पे बनाई है तो उसमें हमने इनको हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है
0: I'm going straight across to Aseem for more details on that story. Aseem, the argument of the AAP government here is clear, saying that we could have done these tests in a lab in Punjab, but we chose not to. This also is, in fact, a false allegation, given that the BJP is, in fact, at the helm of affairs in the state of Haryana, and they are dictating what needs to be done. Simply put, this is a political conspiracy. Aseem. Okay, be with us. Coming back to you. In fact, I believe that Manjinder Singh Sirsa is speaking on this entire matter, let's take a listen.
7: Bhagwant Mann ko bulakar mauka diya ki ye is ghatna karam ke piche kya sachai hai. Tab Bhagwant Mann ne saaf inkar karte hue kaha ki ye video AI generated hai. Ye video artificial intelligence se generated hai. Ye video sachi nahi hai. Akal Takht ne unko mauka diya ki aap do forensic laboratories jo bhi aapko samajh mein aati hain unke naam hame bhijwa dein. Hum is video ki पूरी पड़ताल करना चाहते हैं क्योंकि दुनिया भर के सिखों में मन में रोष है और बहुत पीड़ा है और दुनिया भर के सिख इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं भगवंत मान जी ने उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं की तो अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद यह कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि यह वीडियो भी असली है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। इसके विरुद्ध बजाय इसके कि अकाल तख्त साहिब के इस फरमान के लिए वो अपने पापों का पश्चाताप करते या आम आदमी पार्टी केजरीवाल इस पश्चाताप के लिए को बातचीत आगे करते, उन्होंने इसके विपरीत उनके एक मिनिस्टर हरपाल चीमा जी ने 18 जून 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वीडियो नकली है, हमने 1191 फ्रेम का रेफरेंस करा लिया, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, ये सब कुछ नकली है, ये वीडियो तो एआई वाली नहीं है लेकिन ये जो बीच में भगवंत मान है और ये सब कुछ नकली है। जैसे ये घटनाक्रम की जानकारी मीडिया सत्रों में पहुंची तो तुरंत पंजाब की लीडरशिप पता करने लगी तो पता चला कि स्वपन शर्मा जो कमिश्नर लुधियाना है वो गुड़गांव में घूम रहे थे कल। इसकी जानकारी जैसे ही पता चली तो खोज कब शुरू हुई और संत में निकलते निकलते निकलते सच क्या निकल के आया कि भगवंत मान के ब्लू आइड बॉय स्वपन शर्मा ने इस वीडियो को जशनदीप सिंह एसपी के साथ मिलकर गुड़गांव के एक हरियाणा के एक जसप्रीत सिंह के माध्यम से गुड़गांव की एक फोरेंसिक लैब के लिए गुड़गांव के होटल में मीटिंग करी। इस मीटिंग की पहले तो मैं आपको इस मीटिंग की वीडियो दिखाना चाहता हूं, मैं चाहूंगा एक बार इस मीटिंग की वीडियो जरा आप इसको स्क्रीन पे दिखाएं, आपको पहले पता लगे जशनदीप और स्वपनदीप शर्मा कमिश्नर लुधियाना इस होटल में बैठकर पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो फोरेंसिक लोब रिपोर्टरी बता रहे थे ये इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के काले धन और रिश्वत के धन के दम जोड़ पर ये फोरेंसिक की रिपोर्ट बनाने के लिए लुधियाना की वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें ये जो नीली शर्ट में है ये एसपी माफ करना ये कमिश्नर लुधियाना है और साथ में उनके साथ एसपी जशनदीप सिंह जो कि होटल के अंदर रुके थे और उस होटल के कमरे के अंदर ये सारी डील हुई। इसके जसप्रीत सिंह जिसने ये सारी डील कराई थी ये जब जानकारी पुलिस तक पहुंची और कंप्लेंटेंट जसजीत सिंह पहुंचे उसको पता चला कि मेरी वीडियो एक्सपोज हो गई है, वो अपनी जान माल के बचाने के लिए कि अब मुझे ही मेरा इनकाउंटर ना कर दें, ये जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जसप्रीत सिंह के बयानों के ऊपर अंकित जो दिल्ली से और अरुण पंचकूला से है जिन्होंने ये फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई थी उनको अरेस्ट किया। फोरेंसिक रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे एसपी जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं, ये वो स्क्रीनशॉट है जो एसपी जशनदीप ने दिए जिसमें आप पढ़ सकते हैं जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है। अगला स्क्रीनशॉट दिखाना, आप इसमें देखें कैसे जशनदीप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपने उन्होंने लिखा है डन द करेक्टर इन द वीडियो मैच की फोटोग्राफ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान डाउनलोडेड फ्रॉम पब्लिक अवेलेबल, ये लिख दो कि हमने करेक्टर मैच कर लिया है जो भगवंत मान की डाउनलोड की पब्लिक अवेलेबल इमेजेस है इंटरनेट पे उनके माध्यम से, इन्हें इस तरह कोट कर दो एंड देन डिनाई, इस तरह कोट करने के बाद डिनाई कर दो कि ये भगवंत मान नहीं है, ये नकली भगवंत मान है और ये करके सेंड करो, जल्दी सेंड करो। ये सारा कुक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बताते हैं, जिनकी कट्टर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कि किस तरह रिश्वत के पैसे से शीर्यकाल तक साहिब में जो मसला उनके प्रति पड़ा हुआ है, जिस पे अकाल तख्त साहब ने फैसला लिया, सिख दुनिया भर के सिखों की मान उनके भावना के अनुकूल उनकी पीड़ा को देखते हुए, आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए, ठेंगा दिखाते हुए अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस को का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की वीडियो आपको दिखाई, पंजाब पुलिस किस तरह से एसपी और कमिश्नर पहुंचते हैं और उसके बाद में अभी आपको यह भी बता दिखाता हूं कि किस तरह से जिस लड़के से ये वीडियो बनवाई गई, जब उसको ये पता चला कि मसला ये बन गया है, वो पुलिस तक जाता है और अपनी जान की माफी मांग सुरक्षा के लिए किस तरह से इस लड़के ने बनाई, मैं इसका भी आप जरा बयान जरूर सुने एक मिनट का।
0: Chief Minister of Punjab, remember, just ahead of a few months, really ahead of elections in the state, the BJP is taking on the Aam Aadmi Party government, and particularly the Chief Minister who's found himself embroiled in this controversy. Of course, the argument from the Aam Aadmi Party is that the forensic test by two independent labs that have done seem to find no match between what between the claims that the person in this video, in the sacrilege video, is the Punjab Chief Minister. The opposition, of course, the BJP and the Congress,
7: तो आपने सुना
0: the Aam Aadmi Party daring him to undergo a lie detector test.
7: जशनदीप आए, उन्होंने मुझे कहा बड़े साहब से मिलवाना, बड़े साहब को मिलवाने के लिए होटल ले गए, हम आपको वीडियो दे देंगे अभी। होटल ले गए, होटल के कमरे में ले गए, होटल के कमरे के अंदर स्वपनदीप, जिनको उन्होंने कमिश्नर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि आपको ये काम करना है, उसके एवज में 10 लाख रुपया भी दिया। अब सवाल ये है कि 15 तारीख को आपने बताया, वो लड़का बता रहा है कि 15 जून को मेरे को फोन आता है और मैं रात को गुड़गांव पहुंचता हूं, 16 तारीख को सुबह 10 लाख रुपया दिया जाता है। सारा एक दिन के अंदर 2191 फ्रेम की वीडियो की ये दिखाया गया कि हमने इसकी सारी जांच करा ली है और जिनसे जांच कराई वो कह रहे हैं कि ना तो हम फोरेंसिक का, हमारे पास वीडियो का था, हम तो डॉक्यूमेंट फोरेंसिक थे, उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए और हमसे ये काम करवाया, और एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट भी आपके सामने और वीडियो भी आपके सामने। आप सोचिए आज पंजाब के अंदर जिस तरह मुगलों के राज के दौरान जिस मानसिकता के साथ पाप किया जाता था, मस्सा रंगड़ जैसा आदमी जिसने इन्हें बड़ा पाप किया और इसी तरह गुरु साहिबानों के प्रति अपशब्द और शराब का इसी तरह से ये पाप किए गए, उसी रूप में आकर आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल उनके साथी दुनिया भर में बसे सिखों को चैलेंज करते हुए, हम तो ये पाप भी करेंगे, पैसे के दम पर नकली रिपोर्टें बनाकर अकाल तख्त को चैलेंज करें, और फिर सब लोगों ने आम आदमी पार्टी के सारे ही लोगों से वीडियो डलवाई गई अकाल तख्त के खिलाफ, अकाल तख्त के मान मर्यादा को तार तार किया गया, अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खत्म करने का पाप किया गया। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं, ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं। आज बहुत बड़ा, इससे पहले बेअदबियों की जब घटना घटी, इस पाप के सजा सबको मिली। हमें विश्वास है जिस तरीके से इतना बड़ा पाप किया गया है और इस पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है, चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया, सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया, ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं। कि सवाल आज ये है बड़ा कि जिस कानून को आपने बनाया, जिस कानून की आपने वाहवाही की बात कही, क्या अब उस कानून के तहत पहला मुकदमा भगवंत मान पे दर्ज क्यों नहीं अब तक हुआ? कब उस पे मुकदमा दर्ज होगा? कब भगवंत मान को इस केस के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा? कब उस एसएसपी को, जशनदीप एसपी को, और कब कमिश्नर को अरेस्ट किया जाएगा जिन्होंने गुरु साहिबानों की बेअदबी के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये पाप कुकर्म करने का किया है, जिसकी कोई भी कहीं भी माफीनामा नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें बड़ी पीड़ा के साथ ये बोलना पड़ रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। गुड़गांव पुलिस ने जो काम किया, इसके लिए तुरंत उन्होंने सबको ढूंढकर और सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने करके रख दिया। मेरा मानना है आज देश और दुनिया देख रही है किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये पाप को छुपाना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर अभी पंजाब पुलिस इस केस के ऊपर जांच करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तुरंत भगवंत मान को अरेस्ट करेगी। अरविंद केजरीवाल अपना मुंह खोलेंगे और जरूर बोलेंगे जो गुरुओं की बात करते हैं, आज ये पाप के सामने उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? आज पूरी दुनिया भर के लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद।
8: कोई प्रश्न हो तो सागर आमंत्रित है, कोई क्वेश्चन?
7: चलिए जी,
8: बहुत बहुत धन्यवाद,
7: थैंक यू।
0: All right, so you heard, in fact, from Manjinder Singh Sirsa that the Bharatiya Janata Party is going after the Aam Aadmi Party in the state of Punjab just ahead of elections in the state. Remember, this has got to do with the sacrilege controversy that has surrounded the Bhagwant Mann government in Punjab. Here, the allegations are that there is a video which, in fact, is sacrilegious, and that this video's features the Punjab Chief Minister. Aseem has got the very latest on that story. Aseem, we heard from the Bharatiya Janata Party at this point in time. This is a controversy surrounding the sacrilege video that has been doing the rounds. We have heard, you know, politically from both sides, but legally, where is this really headed? Take us through the details.
9: Well, as far as the current scenario is concerned, the Punjab government looks very stuck on this entire issue, because this is turning out into a political storm for them, because now the Gurgaon police, the action by the Gurgaon police has basically opened the lid. It clearly accuses the Jaspreet Singh, who is the complainant, clearly accuses that he was paid 10 lakh rupees by Punjab police top cops just to ensure that a forensic report, a fabricated forensic report, is made in the favor of Chief Minister Bhagwant Mann. Akal Takht Sahib gave a direction to socially boycott Bhagwant Mann, and also said that they have got done a forensic report in which it is not AI generated as claimed by the CM earlier. But now, with the Gurgaon police exposing the entire scenario in which the Punjab police top cops, in which the name of Ludhiana police commissioner

0: All right, and let's tell you a little more about the fire in the city of Lucknow. Well, what we're hearing is that the fire department has launched a large-scale inspection drive in the city. The fire department teams are inspecting various commercial buildings and structures, coaching institutes as part of this inspection drive. We hear the team is going to visit the Halwasia complex in Hazratganj as well. The fire department will also inspect the Allen Coaching Center operating within this complex. During this inspection, fire safety standards, emergency exit arrangements and the condition of safety equipment will be assessed. Action may be taken against the institutes if any violations are reported. The administration is exercising heightened vigilance regarding safety standards following the Aligarh fire incident. Samarth is getting in more details. Samarth, you know, this is of course coming at a time when this horrific accident has already taken place, killing 15 people. But this is something that was the job of the Department of Authorities to be done before 15 people died, isn't it?
1: Well, exactly. As we know, currently the teams of LDA and fire department are on the ground and in a way checking the equipment at the private coaching centers. We are reporting from that only area. As you can see, CFO is making the things happen out over here, as you can clearly see. And some tough questions are being raised against him.
2: लेकिन कई जगह पर फायर नॉर्म्स पाए नहीं गए, खासकर नवकिशोर रोड पर उनके इलाके।
3: इसके अलावा हम अभी वहाँ भी जा रहे हैं, आज पूरे दिन यही अभियान चलेगा।
2: पॉइंट ये कि जब घटना हो गई है, इतने लोगों की मौत हो गई, क्या अगर डिपार्टमेंट पहले स्तर की कार्रवाई करता?
3: पहले भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ कि हर बिल्डिंग में पहुँच पाना संभव नहीं होता है। हम लोग कार्रवाई कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है पूरे साल।
2: अलीगंज का थाना है, क्या उनकी जिम्मेदारी है फायर डिपार्टमेंट को बताने की कि यहाँ कोई बिल्डिंग अगर इलीगल चल रही है तो वहाँ एंट्री एग्जिट नहीं है?
3: लोग हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तब जाते हैं, एक्ट में हमारे नहीं आती है बिल्डिंग।
2: 15 बच्चों की जान चली गई है बॉस, आप जिम्मेदारी से हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो बनती है।
3: बिल्कुल, हम लोग कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग चेक कर रहे हैं और हमें आप चेक करने दें तो हम
2: अलीगंज में एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आज तक लगातार अलीगंज ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, अलीगंज में सारे
3: नहीं, हमने वो आज के बाद होटलों की मेन स्पेस थी उसे ड्राइव चलाई थी,
2: और अलीगंज में पूरा
3: बॉस कम से कम 200 से ज्यादा होटलों को चलाई।
2: आपको मैं बताऊँ,
3: हमने बिजली काटने के नोटिस भी दिए हैं जो ऑलरेडी बिजली डिपार्टमेंट में हम लोगों ने भेज चुके हैं, और कईयों के नोटिस, कईयों के कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए।
2: बिजलीगंज में जो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ की रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पर कॉमर्शियल सेंटर थी,
4: फायर विभाग की गलती नहीं थी, आप बोल रहे हैं बिजली विभाग की गलती थी कि नहीं थी?
3: लोड के संबंध में, लोड का मुझे आइडिया नहीं है कि उस पे कितना लोड था और एक्चुअल में कितना लोड चल रहा है।
2: एंट्री एग्जिट तो देखना आप लोगों का काम है, एंट्री एग्जिट देखना तो आप लोगों का काम है ना,
3: प्रथम दृष्टया।
2: हाँ, वो देखना तो आप ही लोगों का।
3: हाँ, प्रथम दृष्टया शॉर्टकट रहा होगा
2: सिस्टम की लापरवाही। सिस्टम एक सवाल और भी उठ रहा है, किस टाइम लगी?
3: फायर एनओसी नहीं दी गई थी? फायर एनओसी
2: क्या मांगी थी उन्होंने?
3: नहीं,
2: क्या उनकी तरफ से मांगी गई थी?
3: वो ना उन्होंने एनओसी मांगी गई, ना हमने एनओसी दी, ना ही उस बिल्डिंग में आने वाले।
2: तो मतलब आपके नाक के नीचे फायर एनओसी के बिना वहाँ बिल्डिंग चल रही थी?
5: चल रहा था।
2: फायर एनओसी के बिना कैसे चल रही थी?
5: आग लगी कैसे?
2: अब कहाँ पर सवाल ये है कि जब हम कड़े सवाल कर रहे हैं, उनसे कड़े सवाल पूछ रहे हैं,
5: बड़ी बिल्डिंग लगातार उसमें इतने बच्चों की मौत।
2: ग्राउंड आपको दिखाइए, आइए इधर आइए, बाहर आइए। जब आज तक इंडिया टुडे ने कुछ कड़े सवाल सीएफओ से पूछे, उनके पास कोई जवाब फायर डिपार्टमेंट के पास फिलहाल नजर नहीं आता है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये तो कह देते हैं एनओसी ना ली ना दी, लेकिन सवाल ये है अगर कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं लिया तो उस इमारत में कैसे लाइट आई, या कुल मिलाकर वो कैसे ऑपरेशनल थी? क्या फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी सो रहे थे? क्या उनकी नींद से जागने का समय तब आता है जब किसी बच्चे की, किसी मासूम की मौत हो जाती है? क्या ये कार्रवाइयां या जो अभी रेड करने पहुंचे हैं, जिस कोचिंग सेंटर में पहुंचे, यहां ये लोग कल भी आए थे तो उसी कोचिंग सेंटर में क्यों आए थे? क्या उन्हें ये बताने आया गया था कि यहां सारी तैयारियां पुख्ता पहले से रख लीजिए, चाहे मिट्टी हो, चाहे वो पानी निकलना हो, सारी चीजें हो, और उन जगहों पर क्यों नहीं गए? यहाँ पर आइए, आपको दिखाते हैं, ये पाइप्स यहाँ पर बकायदा फैले हुए हैं, और क्या दुरुस्त पाइप निकले हैं?
0: कि जैसे स्टोरी विद यू Samar Srivastava with the very latest on that story. Now, the fire department is swinging into action, but the big question and something that Samar had been relentlessly asking of the authorities is that, what were you doing all this while? At the end of the day, it's an inferno that has killed 15 people now in Aliganj area of Lucknow. Well, it's also triggered a political storm with allegations of safety lapses, graft, administrative failure taking center stage. As the arrests begin, a blame game over the tragedy has also started. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, who met the injured at the hospital on Tuesday, has gone after the Uttar Pradesh government over the deadly fire. The opposition is asking questions of the government of negligence and alleged corruption in the issuance of no objection certificates. Well, the big question is that how was this building allowed to function when there was a demolition order from 2016? It's a question that the opposition is asking, and rightfully so. Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party demanding a thorough investigation into approvals granted to establishments operating in the building under the current regime. The BJP has hit back, saying that opposition is doing politics over this matter. The government has vowed it will not spare any guilty. Amid conflicting claims from officials and sharp political exchanges, suspended officer Kamlendra Singh has written to the Chief Minister defending his role in all of this.
6: Coaching center mein aag mein 15 masoom chhatron ki mrit hui. इस घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया. इस संदर्भ में मेरे जैसे छोटे स्तर के अधिकारी एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह पर कार्रवाई की गई, किंतु यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है क्योंकि एफएसएसओ का कार्य क्षेत्र सीमित है. ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए. घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ सीएफओ पर की जाए. सीएफओ के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए.
7: ये जो घटना है, जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है. और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं. वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए. अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए. जिन अधिकारियों की वजह से घटना हुई, वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए. अब मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा. कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये तो होशियारी अधिकारियों की समझनी चाहिए.
8: और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं. ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था. ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था, और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है. आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है. आपकी भ्रष्टाचार की कड़े इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है. ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है. कृपया आप राजनीति न करें. पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी.
0: All right, so let's tell you about what the findings are of this probe. 18 officials and engineers have been found guilty. The building architectural plan was actually approved for residential use, but it was very quickly turned into a commercial structure. The demolition order was pending and it was actually revoked in 2016. The building lacked proper smoke ventilation system. Most people who've died have died of suffocation and not of fire burns. Building lacked fire safety arrangements as well. Electrical equipment and wires were installed in an unsafe manner in this structure. The building only had one main entry and exit point. It had no emergency exit for evacuation in case of an emergency, and this is a big violation. All of this, of course, has been as per the probe of the Lucknow Civic Body. A big political storm now erupting in the state of Madhya Pradesh over allegations surrounding land purchases linked to Chief Minister Mohan Yadav's family. This row has triggered a fierce war of words, with the Congress demanding answers, BJP calling the charges baseless. The controversy actually began after an Indian Express report claimed that land holdings linked to the Chief Minister's family grew significantly after he took office, with multiple plots acquired in Ujjain over the last 2 years. The report has now become a major political flashpoint, with the opposition demanding Mohan Yadav's resignation on moral grounds. However, sources in the chief minister's office have rejected the allegations, maintaining that neither Mohan Yadav nor his wife purchased any land after he became the chief minister, and said a detailed clarification would be issued soon. The BJP has hit back strongly, calling the allegations fake, accusing the Congress of misleading the people and insisting that a conspiracy is being hatched against the chief minister.
9: हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ
10: मुख्यमंत्री जी आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए क्या सही है ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीद कर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की यदि नहीं तो क्या सही है ये गलत है या सही है प्रदेश को बताओ रिपोर्ट्स में डिटेलिंग और हम भी पूछ रहे हैं प्रदेश में पूछ रहा है
7: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है आप लोग समझते नहीं बात को ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि तीन मुख्यमंत्री कैसे बदलें वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं
11: मोहन यादव जी के परिवार जो है 140 करोड़ से भी ज्यादा जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहां जहां हाईवे हो रहा है वहां पे पहले से जानकारी है कि यहां पे हाईवे होना है यहां पे कनेक्टिविटी बढ़ना है वहां से जमीन ले लें जैसे मुझे पता है कि आज यहां पे बाईपास होना है तो दाम तो बढ़ेगा ही तो पहले में 3 एकड़ खरीद लिया तो जब वो ऐसा कर ले तो अभी उनके आज सब कोई उनके फैमिली में इनके इन्वॉल्व है इनके कजन इनके सब कुछ तो जब आज आप देखिए बीजेपी का हरियाणा का कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना जो कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको भी हटाना पड़ा तो हम तो कहते हैं जब बीजेपी करता है तब ये तपस्या है और जब मामूली लोग करते हैं तब ये स्कैम हो जाता है
0: Okay, so what is this controversy really about? Really, let's look at Mohan Yadav's family land holdings as per the report, which has increased ever since he took over as the chief minister, an allegation that has been vehemently denied. Well, the land holdings of Madhya Pradesh chief minister Mohan Yadav, his members of his family, extended family, based on figures reported by the Indian Express. Well, at the center is Mohan Yadav, who's shown to be owning 17 acres. Wife Seema holds 11 acres, son Vaibhav has 17, daughter-in-law Shalini has got 10 acres. Among his siblings, brother Nandalal has 17 acres. Another brother Narayan owns 19 acres. Narayan's wife Vureka is shown to have 6 acres. The largest individual holding in the family tree belongs to Narayan's son Amay, who is shown owning 186 acres. The chart includes Mohan Yadav's cousins too. Cousin Nilesh, his wife, together have 108 acres. Cousin Govind, along with family members and partners, is shown to have 47 acres. Remember, these as per the report that has been put out exclusively by the Indian Express newspaper. Right, that report is also bringing us to the end of this edition. You can find that and much more. Up on our website, it's indiatoday.in. You can download the app as well. News continues right here. Thank you for watching.
12: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
13: Hey, Buzz, you hear about the switch?
14: He's right over there.
13: Not that switch, our switch to APG&E.
14: Well, we can do that?
13: Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
14: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
13: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
14: To APG&E?
13: People love their flexible, affordable electricity.
14: Nice.
15: Learn more at APGE.com.
16: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
17: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
16: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
17: They score!
16: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

आग में 15 मासूम छात्रों की मृत्यु हुई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया। इस संदर्भ में मेरे जैसे छोटे स्तर के अधिकारी FSSO कमलेन कुमार सिंह पर कार्रवाई की गई, किंतु यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है क्योंकि FSSO का कार्य क्षेत्र सीमित है। ये निवेदन है।

0: has maintained his innocence and Aam Aadmi Party has backed the under fire Punjab Chief Minister.
1: तो ये सब इन्होंने कोई वीडियो जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जी की वो थी, उसमें उन्होंने कुछ AI जनरेट करने के लिए फर्जी तौर पे बनाई है, तो उसमें हमने इनको हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है।
2: 15 जून 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अनोन नंबर से, बात मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं SP जशन बिल बोल रहा हूँ, एक वीडियो है, वीडियो मैंने कौन सी वीडियो कहते अभी जो बहुत वायरल हो रखी है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके DLP वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था, तो कहते ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवंत मान जी के फेवर में। तो अब मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ हूँ किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
3: आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं, ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं।
4: सो आज इस गल का एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका पंजाब के आवाम के सामने, पंजाब की जनता के सामने, सिख नाम लेवा संगत के सामने और सारे लोगों के सामने कि अकाली दल बादल सुखबीर सिंह बादल उसकी समुची पार्टी किस तरह फर्जी वीडियो तैयार करवाउंदी आ और किस तरह पंजाब के लोगों के सेंटीमेंट न खेडती आ, किस तरह पंजाब के लोगों की धार्मिक भावनावां भड़काउणा चाहुंदी आ, किस तरह पंजाब के अंदर अशांति फैलाना चाहुंदी आ, किस तरह मैं समझदा साडे पंथ नूं बदनाम करने की कोशिश जिहड़ी आ उह अकाली दल कर रहा है और मैं समझदा अज अकाली दल सुखबीर सिंह बादल एंड कंपनी वह पंथ विरोधी आ, पंथ की दोखी आ।
0: Let me take this to my colleague Aseem Bassi now joining us on the broadcast. Aseem, do give us details of what the Gurugram cops have revealed so far of what the investigation has led to. And even the sort of heat that Bhagwant Mann faces because he's been termed Panth Virodhi. And this is not going to be easy to fight given how the Aam Aadmi Party is falling, is standing behind him in full might. But this may be a huge plot.
5: Yes, definitely. As far as the Gurugram police is concerned, they have now two persons and one complainant, Jaspreet Singh, has said on the complaint of Jaspreet Singh, he said that two Punjab police cops came to him in Gurugram, held a meeting in a hotel and offered him 10 lakhs rupees, gave him 10 lakh rupees to make a fabricated forensic report in the favor of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. This entire expose was done by Haryana police, which has led to a political storm in Punjab. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann is facing a lot of heat because Punjab Chief Minister has, Punjab Government Minister Harpal Singh Cheema had brought a report in front of the media saying this is a forensic report and this shows that the person in the video, alleged video, is not Bhagwant Mann. However, now the Haryana police has totally exposed the entire report and network saying that two cops gave rupees 10 lakhs to get that fabricated report in the favor of Chief Minister. So in a way, because the Akal Takht had already declared him Panth Virodhi, Guru Virodhi, and also asked the Sikh Panth to do a social boycott of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. Now SGPC has also come out, a big billboards, big flexes, terming Punjab Chief Minister Bhagwant Mann Panth Virodhi are being installed in the state, close to the Gurudwaras, because the SGPC members, the SGPC-controlled Gurudwaras have been told by the Shiromani Gurudwara Panth

0: The committee to put up flexes, billboards on around the Gurdwaras, where it shows the picture of the Bhagwant Mann and terms him Panth Virodhi on the Adesh of Akal Takht Sahib. And also it is written in Punjabi, I will say, ki Chief Minister nu koi muh na lave, that nobody, everybody should boycott Chief Minister as far as the Panth is concerned. This is what is written. Although the Amani Party is standing behind the Chief Minister, Amani Party State Chief Aman Arora said that this is a handicraft of BJP because Haryana, there's BJP government in Haryana, so they are countering in that way, saying it's a political color given by the BJP ruled Haryana government and Haryana police. But now it is total political storm in Punjab. Akali Dal, Congress, Bharatiya Janata Party, they all are seeking removal of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann.
1: All right, we wait and watch where this is headed, but for the moment, Aseem, many thanks for getting us those details. Moving on, a political storm that has erupted in Madhya Pradesh over allegations surrounding land purchases linked to Chief Minister Mohan Yadav's family. The row has triggered a fierce war of words, with the Congress demanding answers and the BJP calling the charges completely baseless. The controversy began after an Indian Express report claimed that land holdings linked to the Chief Minister's family grew significantly after he took office, with multiple plots allegedly acquired in Ujjain over the past 2 years. The report has now become a major political flashpoint, with the opposition demanding Mohan Yadav's resignation on moral grounds. However, sources in the Chief Minister's office have rejected the allegations, maintaining that neither Mohan Yadav nor his wife purchased any land after he became Chief Minister, and saying a detailed clarification will be issued soon. BJP has also hit back strongly, calling the allegations fake, accusing the Congress of misleading the public and insisting that a conspiracy is being hatched against the Chief Minister.
2: हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है, भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ।
3: मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीद कर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है, ये गलत है या सही है, प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है।
4: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को, ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे? क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि तीन मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।
5: मोहन यादव जी के परिवार जो है 140 करोड़ से भी ज्यादा, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहां जहां हाईवे हो रहा है, वहां पे पहले से जानकारी है कि यहाँ पे हाईवे होना है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ना है, वहां से जमीन ले ले। जैसे मुझे पता है कि आज यहाँ पे बाईपास होना है तो दाम तो बढ़ेगा ही, तो पहले में 3 एकड़ खरीद लिया। तो जब वो ऐसा कर ले तो अभी उनके सबको, उनके फैमिली में इनके इन्वॉल्व है, इनके कजन, इनके सब कुछ। तो जब आज आप देखिए बीजेपी का हरियाणा का कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना जो कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको भी हटाना पड़ा। तो हम तो कहते हैं जब बीजेपी करता है तब ये तपस्या है, और जब मामूली लोग करते हैं तब ये स्कैम हो जाता है।
1: And we cut across to more breaking news coming in on Nirav Modi, as the hunt for him is on. And the latest that is

0: that he was under the influence of narcotic substances, and he allegedly took the child to an isolated stretch near the Faridabad Gurugram border, sexually assaulted her, strangled her with a piece of cloth, and smashed her chest with a stone. I'm reading out these gory details, ladies and gentlemen, for you to understand the kind of evil monsters we are living around. Now, we are told that the cab driver has been caught by the cops, and they analyzed evidence, especially digital and CCTV, to be able to reach out. And a pile of stones were found to conceal that when he smashed her chest with a stone, then covered the body with a pile of stones so her body couldn't be recovered. The police have arrested. We are told this man is 25-year-old Bablu, drives an app-based cab. He has confessed to the crime. Victim's father has this to say.
1: करो कराया को हॉस्पिटल भेज दिए फिर हमको पुलिस ने ले गई फिर छतरपुर से मंदिर का जो अपना वो है वहां से हमको लेके आए बोले चलो उसके एनकाउंटर हो गया देख लो अभी भी विश्वास नहीं कि हम हां मानता हूं कि एनकाउंटर हुई है हमने एफसीओ साहब को मैं फांसी मांगा था.
0: Joins me for the latest on that. Arvind, किस तरह से आप हमें बताइए investigators पहुंच पाए इस अक्यूज तक, कैसे उनको पता लगा कि यही है जिसने ये जो दर्दनाक हरकत जो की है वो हुई है, और ये भी एक्सप्लेन करिए हमको कि कौन सा एरिया था, कहाँ से बच्ची उठाई गई, कैसे इतनी आसानी से कोई उठा के उसको अपनी कैब में ले जाता है, और कैसे पुलिस ने सक्सेसफुली, एंड आई अप्रिशिएट द कॉप्स हियर, कि उन्होंने टाइम पर रहते अक्यूज को पकड़ लिया.
2: बिल्कुल, देखिए एक ब्लाइंड केस था क्योंकि साउथ दिल्ली में जो मेहरौली का सीडीआर चौक है वहां से सुबह 4 बजे बच्ची को ये जो अक्यूज है उसने किडनैप किया अपनी कार में लेकर, उसके बाद 18 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर जाकर बच्ची के साथ इसने रेप किया, और उसके बाद एक टॉवेल था उस टॉवेल से गला दबा के बच्ची की हत्या की. उसके बाद जो ये अपनी कैब में बैठता है, उसके बाद एक राइड बुक होती है उसमें पैसेंजर को लेकर ये वेस्ट दिल्ली इलाके में जाता है. इधर जो दिल्ली पुलिस है उसको जानकारी मिली थी, लेकिन फादर ने ये बताया कि किडनैप किया है, बच्ची चीख रही थी लेकिन कोई नंबर नहीं था. उसके बाद सीसीटीवी की मदद से जो अक्यूज्ड है उसकी कार को ट्रैक किया गया, और उसके बाद वेस्ट दिल्ली इलाके से इसे अरेस्ट किया गया. हैरानी की बात है कि जब इसको कल लेट नाइट क्राइम स्पॉट पर लेकर दिल्ली पुलिस जा रही थी तब ये कैब से उतर कर भागने की कोशिश किया, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और इसके पैर में गोली लगी और एनकाउंटर हुआ जिसमें ये घायल हुआ है. जो अक्यूज्ड है इसके बारे में पता चला है कि इसने कुछ नशा किया हुआ था और काफी एग्रेसिव है इसका नेचर. इसने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया, इसने बताया कि इसने बच्ची को किडनैप किया था, उसके बाद उसको एक टॉवेल से बांध दिए थे उसके हाथ पैर, और उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में ले जाकर उसने हैवानियत की और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया. उसके बाद अभी उसे कोई नहीं था, एक पैसेंजर उसने चूंकि ऐप बेस्ट ये जो कैब है वो चलाता है, एक राइड बुक हुई थी, उसके बाद इसने एक पैसेंजर को लेकर वेस्ट दिल्ली छोड़ा और वहीं पर दिल्ली पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है. जी,
0: हम इसको देख सकते हैं इमेजेस में, हम क्या माने जिस तरह से वो हम देख पा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहा है और उसको पुलिस ने पकड़ा है, तो अब क्या पुलिस ने इसमें एक्शन लिया. और दूसरी चीज, क्योंकि विक्टिम तो कह रही है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए और वो अंडरस्टैंडेबल है जिस तरह से परिवार ये मांग कर रहा है.
2: बिल्कुल, जो फादर है उनका कहना है कि पुलिस ने कहा था कि उनकी बच्ची को वो खोज कर लाएंगे, लेकिन बच्ची की डेड बॉडी घर पर आई है, और जो फादर है उनका कहना है कि वो इस आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करते हैं. और पुलिस का कहना है कि जो क्राइम सीन है वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई थी, उसके अलावा जो कार जो सीज की है उसमें से फॉरेंसिक एविडेंस दिल्ली पुलिस ने कलेक्ट किए हैं. ये भागने की भी कोशिश किया था कल लेट नाइट, जिसके बाद पुलिस के साथ इसका एनकाउंटर हुआ जिसमें इसके पैर में गोली लगी है, इसके बाद इसे हॉस्पिटलाइज किया गया है जहां पर इसका इलाज चल रहा है. और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनके पास न सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस बल्कि टेक्निकल एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि ये जो अक्यूज्ड है इसी ने इस क्राइम को अंजाम दिया था.
0: ऑलराइट, स्टे ऑन विद मी अरविंद, बिकॉज़ एज़ वी आर लुकिंग एट दीज इमेजेस दैट आर कमिंग इन, दैट हाउ द पुलिस मैनेज्ड टू इंश्योर दैट दे वर एबल टू गेट होल्ड ऑफ दिस कैब ड्राइवर एंड जस्ट इन टाइम टू बी एबल टू bring justice at least at this point to the family. And I want to just say, we often criticize and complain against the police, but in cases like

0: issues. The Prime Minister remarked that a whole of government approach was evident throughout this entire process. His advice that the same model should be adopted for every occasion. Well, in the meeting today, the Prime Minister told his cabinet members that if everyone works together, any challenge can be faced and overcome. I'm going straight to Himanshu Mishra for more details on that story. Himanshu, Pradhan Mantri, jo re-exam hua hai, usse khush hai, jo efforts hai, inse khush hai aur is baat ki unhone mantriyon ki aaj meeting mein, cabinet meeting mein tareef ki hai.
1: देखिए, उन्होंने जो है जिस तरीके से नीट को लेकर एक माहौल बना हुआ था पेपर लीक के बाद, उसके बाद उन्होंने कैबिनेट के अंदर पेश किया और उन्होंने कहा कि नीट का जो री एग्जाम है वो बिना किसी परेशानी के जो है वो हम सबके होल एफर्ट से जो है वो हो पाया. और प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि इससे जो है उनकी गवर्नमेंट का जो दृष्टिकोण है वो नजर आता है. और उन्होंने कहा जब भी इस तरीके की कोई चुनौती का अवसर आए तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, इससे ये एक सबक जरूर मिलता है. उन्होंने ये भी कहा कि आगे से यदि हम सब मिलकर काम करें और किसी चुनौती का सामना किया जा सकता है तो उसे पार भी किया जा सकता है. यानी कोई चुनौती हो, सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो किसी भी चुनौती, किसी भी तरीके की जो चुनौती है उससे पार पाया जा सकता है. तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वी एग्जाम जो है नीट का उसको सफल हुआ है उसको लेकर प्रेज भी किया. और उन्होंने कहा ये एफर्ट्स पूरी गवर्नमेंट का है, पूरे सभी सरकार के उन मंत्रालयों का है जिन्होंने एक साथ मिलकर इस पे काम किया, चाहे वो डिफेंस हो, होम मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो. तो इससे जो है वो एक तरीके से साफ क्लियर मैसेज है कि सब मिलकर काम करेंगे तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उस पर सफलता पा सकते हैं.
0: Himanshu Mishra with the very latest in that story. Shukriya Masar Jurne ke liye. Himanshu talking to us about the Prime Minister, lauding the ministers and speaking about the whole of government approach and the effort of the government in ensuring the re-examination, successful NEET re-examination. We're pausing here for a quick commercial break on the show, but on the other side, in a major crackdown, the central government, the Union Health Ministry, has banned 16 drug combinations, saying the risks outweigh the benefits. What's been banned, what's still available, and should patients be worried? We break down the big drug ban and what it means for you on the other side.

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आया। 30 घंटे बीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं, एक जवाब आया है। उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे। देशवासियों, मुझ पे भरोसा करो।

पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। 30 घंटे बीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं, एक जवाब आया है। उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे, देशवासियों मुझ पे भरोसा करो।

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: फ्रेंच परफ्यूम्स बाय चोगा, अ फ्रेग्रेंस दैट लास्ट्स लॉन्गर देन 10 आवर्स, सो आई कैन बी मायसेल्फ अ लिटिल मोर। फ्रेंच परफ्यूम्स बाय चोगा, फॉर हिम एंड हर।
4: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: Good evening. You're watching India First. I'm Gaurav Sawant. Allegations of mishandling and alleged misappropriation of donation at the Divya Bhavya Ram Mandir, the Sri Ram Mandir at Ayodhya, that shocked devotees. It shocked the nation. Devotees are now seeking receipts for the donations they've made in the past. Some have come forward to say that they donated silver bricks worth crores, but they weren't given a receipt for it. Will they be given one now? The special investigation team constituted by the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, it submitted its preliminary findings. It talked about flaws and negligence in donation handling and supervision. They've sought deeper investigation. Today, on this special broadcast, we get you a snap poll. A special edition of the Political Stock Exchange. C-Voter put questions to respondents asking them, how seriously do they view reports of alleged embezzlement of donation funds at the Sri Ram Temple at Ayodhya? Another question put to respondents was, who should be held primarily responsible if wrongdoings are actually found in the investigations? Have these allegations actually impacted their trust in the trust, Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, that manages the handling of donation at the Sri Ram Temple? Are they concerned about possible misuse of donation, especially after these reports and videos of alleged embezzlement? If these allegations are actually found to be true in detailed investigations, would it reflect poorly not just on the temple trust and the district administration, but also on the Uttar Pradesh government? There are other questions. We'll get to the findings of the C-Voter snap poll conducted on the 23rd of June after the SIT submitted its report to the Yogi Adityanath government. Though the findings of the preliminary report haven't officially been made public, but sources tell India Today that the SIT has recommended legal action and detailed investigation into allegations of embezzlement of funds and also identify those responsible not just for the actual act, but also acts of omission and commission. So to gauge public sentiment on this very emotive issue, and this is emotive at multiple levels, from faith to politics, C-Voter put together a snap poll. They reached out to about 1,600 respondents who responded, and we'll get you their findings. But from the Samajwadi Party to the Congress Party and the Aam Aadmi Party, opposition leaders, they've accused the ruling BJP of failing to safeguard devotees, their offerings and their sentiments. So before we get to findings of the C-Voter snap poll and discuss them in detail, let's quickly listen in, not just to the political reactions, but also reaction of some of the devotees, including one who says that they donated silver bricks to the temple trust, but they were not given receipts. Now they want to know if the silver bricks were actually used in the Sri Ram temple, whether for construction or any other purpose, or where are those bricks now? Listen.
1: Ram bhaktoon par, kar sevakon par, goli chalane aur jai Sri Ram bolne par laathi bhaanjne wale log aaj updesh dene chale hain. Ayodhya ke baare mein jo samachar patron mein sunne ko mila, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
2: 2021 में भी इन्होंने एसआईटी बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है, उस टाइम भी एसआईटी बनाई थी, कोई एफआईआर नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये एसआईटी भी थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाओगे, ये एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। इस एसआईटी, अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, छोटे छोटे आम कर्मचारियों को पकड़ पकड़ के एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। अरे इतने सालों से इतने महीनों से अगर चढ़ावे की चोरी हो रही थी तो वो छोटे छोटे कर्मचारी बिना किसी बड़े आदमी की शह के तो कर नहीं रहे थे। जरूर चढ़ावे की चोरी ऊपर तक जा रही थी। तो बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
3: ये पूरा देश का मामला था, इसमें हम तो बहुत पहले से, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने भी इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग किया था। ये राज्य का मामला नहीं है, राष्ट्र का मामला है। लेकिन आप बता रहे हो कि साई टी ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना आवे, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया।
4: जी, रसीद अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें आमंत्रण भी नहीं मिला था जब अयोध्या मंदिर का ओपनिंग किया गया। अगर कोई 200 किलो चांदी हमारा सिंधी समाज पूरे वर्ल्ड से हमारे सिंधी भाइयों ने डोनेट किया, तो क्या उनके पास एक इन्विटेशन नहीं जाना चाहिए था? नहीं गया, दान दिया, दान समझ के हम तो भूल गए। लेकिन अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
5: अप्रॉक्स 60 किलो चांदी के आसपास बनती है। एक किलो चांदी का एक कलश था जो हितेंद्र पवार जी हैं ऋषिकेश से, वहां के ज्वेलर्स एसोसिएशन के हेड, उन्होंने भेजा था, वो भी मैंने जमा करवाया। तो जब हमने दिया तो हमने अपने भाव से दिया, लोगों की आस्था से दिया, लेकिन आज की परिस्थिति में हम भी समझ रहे हैं कि ये चीजें कहाँ गई। देखिए रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
6: ये दीपक आपने दिया था?
5: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
6: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
5: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
0: रिमेम्बर इन द 1950s एंड 60s हिंदी फिल्म्स हैड सॉन्ग्स लाइक राम नाम जपना पराया माल अपना। Sadly, in real life is being mirrored here. At least that's what the allegations are. Donation theft allegations are extremely distressing for any Sri Ram Bhakt. What do respondents say? Let's begin the political stock exchange with the first question. The first question put to respondents by Sea Voter was, how serious do you consider reports of alleged embezzlement of donation funds at the Sri Ram Mandir at Ayodhya? Watch those responses. 66.4% of the respondents say extremely serious. Now 63% say yes, it is serious. Others 52.6%. Now more than 63% say these allegations are extremely serious. Another 23% say yes, it is quite serious. So now put the two together. More than 86% say it is a very serious issue. But does that seriousness reflect in the pace of the investigations? Joining me on India First is Anurag Bhadoria, spokesperson of the Samajwadi Party. Shantanu Gupta is a political analyst and author. Arvind Kumar Jain is former Director General of the Uttar Pradesh Police. Adwaita Kala is a respected author and political analyst. And I want to welcome all our guests on the show. And I want to begin by asking Anurag Bhadoria. Jo Sea Voter ke respondents hai, Anurag Bhadoria, they say it's a very, very serious issue. 83% plus. But jo karyawahi ab tak hui hai, वो सीरियसनेस दिखती है सरकार की कार्यवाही में?
7: देखिए, इस बात को लेके समाजवादी लोग हमेशा से हमने उठाया कि भाई वहां पे दान पात्र में गड़बड़ी की खबर आई, समाजवादियों ने सबसे पहले उठाया, क्योंकि हम लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं। अब ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, ट्रस्ट के लोगों की बनती थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी अगर इंक्वायरी होती तो मुझे लगता और अच्छा होता। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी बैठ गई और एफआईआर कोई हुई नहीं। एफआईआर होती हो, एसआईटी होती तो और अच्छा होता। और फिर ये तो विश्व हमारे चूंकि आस्था का विषय है, आस्था में तो कहते हैं ना, वहां पे दान था, दक्षिणा थी, श्रद्धा का सम्मान था, हर सिक्के में भक्तों का विश्वास महान था। अगर उस विश्वास पर किसी ने हाथ डाला, वो सिर्फ चोरी नहीं, आस्था पे प्रहार था। अगर किसी ने भी वहां हाथ डाला है, जिसका भी नाम आता है, जिसकी भी अभी इंक्वायरी में पता चलेगा, जिस तरह के अगर आता है तो जिस तरह के लोग कह रहे हैं, सिंधी समाज की अभी आपने बात सुनाई कि उन्होंने 200 अभी आपके सामने बोला, एक साहब कह रहे थे मैंने वहां पे दिया था, तो सवाल उठता है कि जो लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं तो ये तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है ट्रस्ट की, कि उनके विश्वास को, उन जो हमारे आस्था के लोग हैं जिनकी आस्था है उनके विश्वास को जीतना और उनको बताना कि नहीं आपका उपयोग हुआ है। लेकिन जो फाइंडिंग आ रही है, जिस तरह से पता चल रहा है कि जाते समय तो चेकिंग होती थी, आते समय नहीं होती थी, ये सब सूत्रों से चल रहा है। सूत्रों से ऐसा पता चलता है कि वहां पे गिनती में गड़बड़ी हुई, सूत्रों से पता चलता है कि वहां पे किस तरह से कैमरे में वहां सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए जाते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां पे कमल नयन दास जी जो महंत है उन्होंने भी इसमें उंगली उठाई, रजनीश जी एक बीजेपी के नेता उन्होंने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी इसके बारे में, नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी इसकी खामियां गिनाई है। तो सवाल यह है, वहां के कई संत समाज भी ये बात कह रहा है, तो सभी जब इस बात को कह रहे हैं तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। और ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहूंगा इतने गंभीर विषय पे आप आ क्यों नहीं रहे हो, आप भी तो अपनी बात रखो ना, हम तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, आस्था को मानने वाले लोग हैं, प्रभु के यहाँ कोई गड़बड़ी
0: नहीं था। शांतनु गुप्ता इनटू दिस कॉन्वर्सेशन,
7: जमीनों में गड़बड़ी हुई तो आवाज हमने उठाई, लेकिन ये जांच का।
0: शांतनु गुप्ता, योगी आदित्यनाथ इज नोन फॉर अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच और अ नो नॉनसेंस पॉलिसी, देर आर बुलडोजर्स एंड देर आर इनकाउंटर्स यू नो इन उत्तर प्रदेश। Is there merit in the Samajwadi Party now saying why no FIR yet in this case?
8: See, Gaurav, as soon as Yogi Adityanath administration got the request from the trust that SIT should be constituted, they constituted the SIT within 4 hours. And it's a very senior SIT with one officer of 2004 batch, IS officer, one IPS officer 2008 batch, who was also in CBI, who was also in Interpol, and one financial expert from the finance department. A three high member committee was constituted within 4 hours of the request of the trust. And mind you, the trust is requesting for SIT, right? And there are precedents of Supreme Court that SIT can be formed before the IR. There are multiple cases throughout India which are validated by High Court and Supreme Court later that SIT can be formed, right? Because the so-called whistleblower Pawan Pandey of Samajwadi Party, who spoke first ki 7.5 crore ki chori hui hai, when someone from Op India called him and asked him the source, he said, mere paas koi source nahi, pure Ayodhya mein charcha hai. So pure Ayodhya mein charcha, there cannot be reason for FIR. So you have to find out the investigation, what happened.
0: Sir, now that that same SIT of very high level officials have submitted their preliminary findings, should there not be an FIR at this stage?
8: We don't know. So from all the channels, so Twitter, people are saying sources. You were also saying sources. Apart from these three people in the SIT, Home Secretary Sanjay Prasad and Chief Minister, apart from these five people, I doubt anyone knows the content of the SIT. And everybody is saying the sources. Have you talked to Vishwas Pant or Kiran or Neel Ratanji or Chief Minister or Sanjay Prasad? These are the only five people. Rest all are saying whatever they come. They are saying, uska bhatija tha, iska bhatija tha. You find out, you get to know later, Champat Rai ji have bhatija. गोपाल राय जी का नाम ही कुछ और है, उनका कोई भतीजा नहीं। कोई कह रहा गोबर ने छुपा दिया, किसी ने कहा शराब पिला दी, सीसीटीवी कैमरा गायब हो गया। दीज आर ऑल अटकलबाजी, नन ऑफ देम वेंट टू अयोध्या। ये लोग तो कभी मंदिर ही नहीं गए, लेट अलोन डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। ओनली दीज थ्री पीपल वेंट इन द इन्वेस्टिगेशन मोड, रेस्ट ऑल माइट बी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट। दैट्स वाई आई थिंक लेट द एसआईटी रिपोर्ट कम। एंड एज एंड टूडे वन ऑफ द आई थिंक आज तक ओनली आई हैव हर्ड द न्यूज, one of the I think VHP president, working president Alok Kumar ji said that the FIR should be done as soon as you find the culprit. So I think nobody is trying to escape. Only thing, we just want
0: to... No, but FIR is not done once the culprit is found. And I want to bring in Mr. AK Jain. Mr. Jain, should there not be an FIR at least after the preliminary findings have been submitted, if not the day the complaint was first made, instead of approaching Yogi Adityanath or the Uttar Pradesh government, should the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetre not have approached the local SHO to register an FIR, file an FIR? 86% of respondents here say this is a very serious issue. In your view, sir, as a very seasoned police officer, does that seriousness reflect in the actions of the Tirth Kshetre or the administration?
9: I have been saying right from day one that FIR should have been filed by the trust people, by the treasurer. They have failed to do it. Instead, they wrote to Chief Minister of UP. No time was wasted and a very high level committee was formed with very outstanding officers. I can vouch for them. Now they have submitted recommendation. I am 100% confident that within a day or two, you will come to know. Actually, on SIT, legal opinion is being taken from the law department. Generally, such FIRs are not lodged by government. Who will be the complainant? Who all will be named? So many facts are there in the report submitted by the officers. And a very huge SIT will have to be formed, at least of 20-25 people, of officers, who will look into various aspects of the thefts. Nobody denies it that thefts have not taken place. The amount of theft, who all are involved, and in which shift it took place, and why they were not being searched. A finger is being raised on a few government officials also. I think everybody will be booked. Government is very, very serious about it. Trust is also serious. VHP is also serious. High-level people in VHP deployed at Ram Janmabhoomi might be involved in it. And I have always said that very stern action should be taken against them. Even action under Gangsters Act should be registered. And the illegal properties which they have made during the period, they have bought cars, such illegal properties should be confiscated by the police.
0: Oh, absolutely. So, you know, step by step, sir, you've been former DGP of Uttar Pradesh. Shouldn't the trust, the treasurer of the trust, moment allegations of corruption were made or embezzlement was made, gone to the nearest SHO? Tehreer usi samay dijiye, register the first information report, let police begin, let there be an SIT, let there be a detailed investigation, but step one is FIR. Should that not have happened day one? Approaching the chief minister, then approaching the prime minister's office, then approaching others. Sir, the common man does not do that. Common man goes to the SHO.
9: Yes, you are right. But actually, the amount involved, people involved, it is not, there is no clarity about it. FIR should be, that is no FIR. What is FIR? FIR is first information report. Yes. Police has already got so many reports. Now, the problem is that against whom FIR should be lodged?
0: Again, unknown, then investigation?
9: No, that makes investigation very difficult. And they get bail also from court because there is no named FIR. I will request that we should wait for a day or two when we have waited for so long. And I am 100% confident that a proper SIT with senior officials in it, dedicated team will be put. Every aspect will be looked into, and all the deleted CCTV footages, they are being retrieved, and nobody will be spared. Let me tell you this, because
0: fair enough. Because Advaita, the opposition is already saying every day's delay in legal and penal action and investigation is actually giving more time to those who may have been involved to destroy evidence and mislead investigation. And the Sea Voter survey very clearly shows 86% respondents say it's a very serious issue. Does that seriousness reflect in the actions of the trust?
10: You know, Gaurav, first of all, I want to say that what has come to light, even if they're just accusations at this point of time, are extremely disturbing. And yes, like the people surveyed and the other members on this panel, I do believe that there should be a fair and a very extensive probe into this matter. Now, looking at, you know, is there being a delay and things of that nature being suggested? The fact that you jumped straight to an SIT and didn't go through the process of the local Thana and all of that already shows that this is being taken seriously and it is being escalated to the SIT almost immediately. So in that sense, you cannot fault the government for not taking it seriously or not escalating it to a level which would not have happened had they followed the normal course of going to the Thana, et cetera, et cetera. Okay. Secondly, we have to keep in mind that this is a preliminary report of the SIT, right? So, and they have gone into extensive analysis. They have not only looked at the donations, which were the primary you know, complaints that came in, but they've also gone into land records, transactions, appointments of people, hiring of people, how VIP darshans were exchanged. So they've increased the ambit of what they're investigating as well, ensuring that they go into all aspects of the running of this trust. And I think that is very significant as well and needs to be highlighted.
0: Okay, let me quickly go to that second point, Advaita, that we've that C voter raised with respondents. Who should bear primary responsibility if any wrongdoing is found in this matter? Who's responsible for alleged wrongdoings? And when you look at those numbers, more than a third say the Temple Trust is primarily responsible for this mess. Of course, another 10% say the local administration is also culpable and responsible. Close to 17% hold the government responsible, the state government. Because what were they doing? What about their supervision? Was that, of course, trust is an independent body, but is there no oversight? Also, let me take the next question. Has hearing about these allegations impacted the trust, the faith in the management of donations made to the Divya Bhavya Navya Ram Temple at Ayodhya? Once again, when you look at those numbers, two-thirds of the respondents agree that there has been an erosion of trust. About 18%, they say no, that there is no erosion in their faith in the system. Let me once again begin by asking Anurag Bhadauria, does the responsibility, Anurag Bhadauria, lie only with the Temple Trust or does it go higher? Matlab, keval Shri Ram Janmabhumi Tirth Kshetra ki yeh galti hai ya unki bhumika sandeh ke daire mein hai ya phir prashasan chahe wo Ayodhya ke star par ho ya phir Uttar Pradesh ke star par ho, yeh responsibility upar tak jati hai.
7: Dekhiye, yeh to samuhik jimmedari hai. Jab trust wahan pe hai to trust ki jimmedari badi ho jati hai. कि अंदर में जैसे सीआरपीएफ की फोर्स लगी हुई है, उसके बाहर पीएसी है, उसके बाहर यूपी पुलिस है, इतने घेरे सिक्योरिटी के बने हुए हैं, तो वहां पे कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, क्या वहां पे नियमों का पालन किया गया? जैसा कि पता चला कि एसबीआई बैंक ने अपनी काउंटिंग की जिम्मेदारी किसी थर्ड पार्टी को दे रखी थी, अब वो भी पता चलेगा क्या ये सच है क्या झूठ है जो खबरें आई हैं. तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह नहीं किया? क्या वो अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिम्मेदारी से उसको नहीं निभाया? और ये बात आस्था की है, ये बात राजनीतिक नहीं है. हम समाजवादी ने जब इस बात को उठाया, जब समाजवादियों को लगा कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दान पात्र में गड़बड़ी हो रही है, तो हमने उस इश्यू को उठाया श्रद्धा के लिए कि हमारी श्रद्धा पे तो चोट ना पहुंचे. लेकिन अगर कोई उसको राजनीतिक रूप देता है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम उस पर राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, जिनको प्रभु राम, जो हमारे राम भक्त लोग हैं, जो आते हैं, दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, कम से कम वो जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो प्रभु के चरणों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी तो जानना, ये भी तो बहुत जरूरी होता है. ये मेरी चिंता, ये हमारी चिंता का विषय है. हमारे चिंता का विषय ये नहीं है कि ये इसमें कौन ये मैंने राजनीति इसमें हो या ना हो, क्योंकि हम लोग तो उनके आदर्श आचरण पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद इसीलिए समाजवादियों को मिलता रहा है. अयोध्या में प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया, अयोध्या हम जीते हैं, तो हमें लगता है जब प्रभु के हम आदर्श आचरण पे चल रहे हैं तो अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही होगी तो हम जिम्मेदारी ट्रस्ट की होती है. जो सवाल उठता है उसको जल्दी से उसका समाधान करना, और जो श्रद्धालु हैं, जो आस्थावान हैं, जैसे हम लोग जो समाज या लोग या जो प्रभु का मानने वाले,
0: शांतनु गुप्ता वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू यू बिकॉज़ शांतनु गुप्ता रिपोर्ट सजेस्ट दैट इंटरनल ऑडिटर्स हैड पॉइंटेड आउट गैप्स इन द डोनेशन कलेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन. रिपोर्ट्स सीम टू इंडिकेट, अगेन दीज आर लोकल रिपोर्ट्स, दैट ऑल दीज ऑब्जेक्शंस ऑफ द ऑडिटर्स वर इनिशियली ब्रश्ड अंडर द कार्पेट. डज द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई only with the trust, the Ayodhya administration for poor supervision, or does it extend all the way up to Lucknow? And let me also come to an aspect of age here. When you look at the respondents, among those above the age of 55, 40% of the respondents say the allegations will negatively impact their opinion of the performance of the state government. But when you go to youngsters between 18 and 24, 58% believe that the state government will be negatively impacted, sir.
8: Before I make my point, I feel very surprised and sound very bizarre when someone like Anurag Bhadauria said, yeah, hamari aastha ka vishay hai, prabhu ko manne wale log hai. These are the same people, I need not repeat that, who are shot dead many Ram Bhakts who never wanted the temple. Ye sare log hain jinki nani ko pasand nahi tha temple. So they are just fishing in troubled waters from Akhilesh Yadav's house and Dimple Yadav's house. Mandir is kumar sabhi, they have never visited the temple. Crores of people have visited the temple. Rahul Gandhi to Sonia Gandhi to Priyanka Gandhi to
7: Arun Kejriwal to... Hum toh Prabhu ko maanne wale log hain. Hamare yahan itna bhavya mandir humne bana diya. Kedarshwar mandir itna bhavya banaya. Aur ab mujhe yahan aane dikha rahe.
8: There is some trouble in the temple. So they have
7: nothing. Sawal hum hi utha rahe hain aur hum hi ko...
0: Ek Anurag Bhadauria, Shantanu apni baat puri kar le. Phir main aapke paas aunga. But let Shantanu complete his point, sir. Go on, Mr. Gupta.
8: Having said that, see, you are quoting, everybody's quoting some reports, some access. I don't know which access to which reports are. You all should produce them and tweet that reports. I don't know which report. Because I'm not privy to any report, any SIT, anything. I don't have any sources. I have not talked to Sanjay Prasadji. I have not talked to CM. I have not talked to the three people. If any one of you have talked, and then you can put forth that thing. Let's wait for the SIT, which is a very, very senior SIT. And then I'm sure the way we have seen Yogi Adityanath administration from nine and a half years, they have not spared anyone. So if anybody will be culprit, whoever will be culprit, they will, Yogi Adityanath government will surely go to the deep root of it, and every world will face the law of the land. And that we have seen in the last 9.5 years of Yogi government.
0: Fair enough. Anurag Bhadauria wants to respond on the political point. Anurag Bhadauria, Shantanu Gupta to ye keh rahe hain ki Samajwadi Party kaun hote hain, Ram Ji par prashn ke mandir aur donation par sawal uthane wale, unki to na aastha hai na mandir jate hain.
7: Aap dekhiye, sawal ye, wo aina hame dikha rahe hain jin pe humne sawal uthaya hai, wo hame sikha rahe hain जिन पे हमने पूछा है कि वहां गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई है. सवाल उठता है प्रभु की कण कण में है. जहां प्रभु को अपने घर के मंदिर में भी आंख बंद करोगे ना, ध्यान लगाओगे, यहां पे प्रभु को सोचोगे, प्रभु वहां प्रकट होंगे.
8: प्रभु तो कोठारी ब्रदर्स के समझने की कोशिश की,
7: सनातन को समझने की कोशिश की. हमने प्रभु को मानने वाले लोग हैं, आपके बीच में नहीं रखे ना. मैंने तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं. हमने तो इतनी बड़ा भव्य मंदिर वहां
0: पे
7: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इतना भव्य मंदिर केदारेश्वर मंदिर टाबा में बनाया है, तो मैं तो सभी से कहता हूं, आप प्रभु को वहां भी आइए ना, महादेव का दर्शन कीजिए. और जब मंदिर की आप बात करते हो, तो हम लोग तो प्रभु को मानने वाले इसलिए लोग हैं, आज से नहीं, न सालों से बजरंग बली की पूजा अखिलेश जी के यहां पर. आप जाइए सैफई में, कितने सालों से लगी है, 100 साल से ऊपर की मूर्ति है. सोचो उस जमाने की लगाई हुई पूजा को मानने वाले लोग. इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीति नहीं करना चाहते, आप राजनीति कर रहे हो. आपने जैसे ये बोला कि प्रभु को नहीं मानते, आप हमें सर्टिफिकेट दे रहे हो, आप सनातन का सर्टिफिकेट मुझे दे रहे हो. मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप सनातनी हो. हम आपसे पूछते हैं, आप सनातनी हो कि नहीं हो. प्रभु के यहाँ अगर गड़बड़ी पे सवाल हमने उठाया, तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए सनातनी होने के नाते, कि सवाल
0: उठाया. समाजवादी पार्टी टू रेज दीज क्वेश्चंस, डू कीप इन माइंड द अयोध्या एमपी इज द समाजवादी पार्टी लीडर. सर,
8: एक सेकंड. एंड इफ द प्रवचन इज ओवर, द समाजवादी पार्टी एमपी अवधेश प्रसाद टू 2 years टू वेंट टू द टेंपल. ही वन इन 2024 एंड जस्ट 2 months बैक फर्स्ट टाइम ही वेंट टू द टेंपल. उनके घर से 10 मिनट का रास्ता है, एंड ही नेवर वेंट टू द टेंपल. अखिलेश यादव, डिंपल यादव को तो टाइम ही नहीं मिला अभी तक, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दे डोंट हैव अ लोकल स्टैंडर्ड. एंड इट वाज अ ट्रस्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन टू आस्क फॉर द एसआईटी. इन्होंने एसआईटी नहीं पूछा, इन्होंने
7: मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रभु कण कण में है. प्रभु के कहीं गड़बड़ी होगी तो हम सवाल उठाएंगे. प्रभु को मानने वाले लोग हैं, प्रभु के आदर शास्त्र पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद हमें अयोध्या में मिला. आपका आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप प्रभु के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद आपको नहीं मिला. इसलिए मैं पूछता हूँ, जब राम भक्त की आपका
0: Let me quickly bring in Mr. A.K. Jain, because on such a sensitive issue, I want to actually move beyond politics, because devotees don't see political parties, they see faith. And Mr. Jain, the temple trust, local administration at the level of district or the state government, in your view, sir, you've been DGP, you understand administration, who's responsible? One, the culprits who indulged in the crime, but acts of omission and commission, poor supervision, if not effective monitoring, who's responsible, sir?
9: Trust is responsible. Full support is being provided by the state government. Full support has been extended for last so many years by the state government, police department. I was posted as SSP Faizabad 91, after the firing took place, Shri Mulayam Singh Yadav posted me there to control the situation because there was a lot of resentment against police, against that firing of 1991. I was SSP there. I have been IG zone of Lucknow zone for four times. And I have been supervising Ayodhya very, very closely, very, very minutely. And in other capacities also as ADG Law and Order, as DGP, I have been closely associated. Let me tell you, frankly, nobody can dispute it, that trust is responsible. Full support is being extended by administration. You know, it's a very sensitive issue. District magistrate cannot say that I will enforce this. He has no locus tendi. Now, things will be clear. State new guidelines will be issued. The role of district administration will be defined. Mukhya Karyapalak Adhikari, some senior person, as at Kashi Dham, will be posted there. He will be monitoring day-to-day affairs. And I think things will improve.
0: ये तो पहले दिन से ही होना चाहिए था अद्वैता मतलब अभी जो बात हो रही है कि किसने श्रीराम भक्तों के सीने पर गोली चलाई और मतलब एक कोई फिजिकली गोली चला रहा है एक इमोशनली गोली चला रहा है एक कोई ऐसे मार रहा है एक आप उनके दान के चंदे में इस तरह की धांधली के आरोप लग रहे हैं डेविटी तो दोनों तरह से आहत है अद्वैता व्हेन अ डेविटी स्टार्ट्स टू आस्क व्हाट हैपेंड टू द सिल्वर ब्रिक्स दैट आई डोनेटेड व्हाई वाजंट आई गिवन अ रिसीट then this is serious erosion of faith in the temple management.
9: Now I think...
10: Yes, I agree. Adwaita. I agree. Gaurav, I absolutely agree with you. And I think you know, that is something that is... Even the public is responding to because the Ram Mandir has been so central to so many of us in the way that we have approach the subject, that this seems like a defiling of sorts, but I think it's also important to separate the facts from the actual, situation on the ground. When your survey says that, you know, they hold the state government responsible, it's important to clarify that this is an independent trust. As far as the state government is concerned, they have no role to play and no say or control in the functioning of the trust at all. This was a trust that was formed by the center after a court verdict, Supreme Court verdict, for the establishment of the trust. So really, the only role that the state has as far as this entire situation is concerned is the investigation when it is at the state level. And when it comes to the investigation at the state level, Yogi Adityanath has wasted no time in taking this directly to an SIT level and will pursue it to its logical end. And that's really what he can do. You know, we are governments are bound by the rules that are in place. This is an emotive issue. People will respond, people will react, but the facts on the ground are that there is a limited role that the government, the state government,

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: The chilling question remains, have the lessons of this tragedy been learned? India today traveled to coaching and training hubs in different cities. What we found should worry every parent. At Bhopal's coaching hub, students point to hazards all around them. A single entry and exit, exposed electrical wires, and narrow lanes choked with parked two-wheelers.
3: हम जिस जगह पे मौजूद हैं, उस गली की आप पहले स्थिति देखिए। उस गली में अगर आप देखें, तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए, सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकर जाल है वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं।
4: वहाँ पे ज्यादातर सकरी गलियां हैं तो डर का माहौल रहता है, बिकॉज आग लगेगी तो लोग कहाँ जाएंगे, और ऊपर से जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे पैक है तो इमरजेंसी गेट या खिड़की वगैरह कुछ नहीं है।
3: इमरजेंसी व्हीकल्स के आने का रास्ता है या नहीं है?
5: मुझे नहीं लगता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं तो इससे और ज्यादा चांसेस है फायर लगने के।
2: आफ्टर द लखनऊ ट्रेजेडी सिविक ऑफिशियल्स स्वंग इनटू एक्शन As India Today accompanied inspection teams, multiple violations came under scrutiny. Travel hundreds of kilometers south to Hyderabad and the concerns look strikingly familiar. Narrow staircases, dangling wires and the absence of dedicated fire exits raise troubling questions.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: are talking about this. In Ayodhya, people also spoke of this alleged land scam. In Ayodhya, people are seeing their homes may be broken, their homes may be impacted, but there are others who are roaming around in big cars and big houses.
1: Very pertinent point, Gaurav. Same person, Pawan Pandey, did a press conference in 2021, just 8 months before the election, about the land scam. Samajwadi Party or no one ever went to High Court or Supreme Court because there was no land scam. So I think this will be the tendency going to the UP election. They will find multiple things. Something maybe have a truth. I'm not saying there is no embarrassment happened. But all the faith, all the surveys coming because there's so much confusion created around the TV channels, around the social media by Samajwadi Party, right? Once the SIT report will come out, once the Yogi Adityanath government will take action, I'm sure this survey should be done again. And also, there should be a question asked, what should be done about the people who spread the rumors? If there are rumors, right? The people have spoken amounts. 7.5 crores, 200 crores, 500 crores. They all should be booked that they were all spreading rumors. This can lead to writing. This is a serious issue. So everyone who's speaking on Ayodhya topic should be very serious, should be come with a sense of responsibility. Don't do scoot
0: but
1: and...
0: But sir, it's the Yogi Adityanath government. And let me bring in Anurag Bhadoria. Shantanu Gupta very clearly says, Anurag Bhadoria, ki agar... ये र्यूमर मॉन्गरिंग है 7 करोड़ 7.5 करोड़ कोई बोल रहा है 200 करोड़ कोई बोल रहा है 500 करोड़ कोई बोल रहा है उससे भी बड़ा स्कैम है किस आधार पर ये तो मतलब मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं एसआईटी की रिपोर्ट तो किसी ने देखी नहीं है तो क्या इंतजार करना चाहिए जब तक एफआईआर नहीं होता
2: तो सवाल उठता है कि जब एसआईटी के लिए अगर इनकी बात को मान लिया जाए और ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने एसआईटी की मांग की थी तो क्या ट्रस्ट ने किसी पे एफआईआर की थी तब एसआईटी की मांग की एक बात दूसरी बात मेरी बात सुनिए दूसरी बात हमने तो नहीं बोला सिंधी समाज ने जो 200 चांदी की ईंट के बारे में अपनी रिसिप्ट मांग रहे हैं वो तो कोई समाजवादी नहीं हमने तो नहीं बोला उनको भाई वो अपनी रिसिप्ट उनको नहीं मिली तो वो कह रहे हैं मैं तो नहीं कह रहा हूं ना तो सवाल ये उठता है कि हम तो एक जहां पे एक प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को इश्यू को हमने रेज किया है इस बात को वहां के जैसे महंत कमल नयन दास जी भी आपने ब्रजभूषण सरन सिंह की बात सुनी होगी कहते मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा बहुत बड़े लोग हैं मेरा नुकसान हो जाएगा अब जब बोलने को लोग तैयार नहीं है वैसे तो इतने मजबूत आदमी है वो हर बात पे बोलते हैं यहां पे क्यों नहीं बोले फिर नृपेन्द्र मिश्रा जी का भी हमने सुना कि भाई कुछ तो खामियां थी इस तरह का भी उनका आया तो सवाल उठता है कि जब कुछ खामियां हैं और बात उठी है तो ये जिम्मेदारी ट्रस्ट की बहुत बड़ी हो जाती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि उसका सच सामने आना चाहिए क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है और मैंने तो बोला था सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो तो ज्यादा अच्छा है हम तो यही कह रहे हैं कि जो मेरे प्रभु को मानने वाले लोग हैं ना इसलिए हम ऐसी बातें कह रहे हैं समाजवादी लोग इसलिए बात को कह रहे हैं कि प्रभु के यहाँ
0: शांति गुप्ता वो क्विकली रिस्पॉन्ड बिफोर आई ब्रिंग मिस्टर जैन एंड अद्वैता
2: सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी हो जाए तो
0: शांति गुप्ता अ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब परहैप्स अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब
1: For sure, if needed be, if SIT people are not satisfied, if we see the, if the government deem fit, the administration deem fit. See, agar police se jaanch hoti hai, kehte hai, toh SI bitha diya, ye kya jaanch karega? They have put a high-powered SIT. If the CBI is there, the Modi ki CBI hai. So they will find an argument if the report doesn't suit the argument. And also one more point, this should not become a reason for the government control of the temple. Right? Because in South, there are multiple such cases came in the South Indian temples, which are managed by the governments there, right? In Karnataka, in Andhra Pradesh, in Telangana, in Kerala, then many such cases came out where government is managing. So this should not become a case. The process should become robust. SIT should give the ki kaise counting honi hai, kaise receipt milni hai. That process should be rock solid. I'm sure this process is mastered. India is not a country of new temples. We have multiple temples. Bahut sara chadava aata hai and the process is sorted.
0: And only yet, unfortunately, we had these allegations, Mr. Jain. For decades and decades, there was a campaign... Free Hindu temples from government control.
1: Exactly.
0: Why should the government only control Hindu temples and their funds? But if there is such shoddy management, the government will find an excuse to take control. And how will those funds be used? But effectively, you cannot even accept embezzlement of funds. And when I interviewed Mr. Nripendra Mishra, he did point to certain systems that should have been put in place. Doesn't this... raise that very basic question. Why were these systems not in place? Jab itna bada divya bhavya Ram Mandir ban raha tha, to donation ki counting or management ke liye ek foolproof system nahi bana sakta tha hamara samaj.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: once the SIT report will come out, once the Yogi Adityanath government will take action, I'm sure this survey should be done again. And also, there should be a question asked, what should be done about the people who spread the rumors? If there are rumors, right? The people have spoken amounts, 7.5 crores, 200 crores, 500 crores, they all should be booked that they were all spreading rumors. This can lead to rioting. This is a serious issue. So everyone who's speaking on Ayodhya topic should be very serious, should be come with a sense of responsibility. Don't do scoot
1: but
0: and
1: sir, run. It's the Yogi Adityanath government. So, and let me bring in Anurag Bhadauria. Shantanu Gupta very clearly says, Anurag Bhadauria, ki agar ये र्यूमर मॉन्गरिंग है, 7 करोड़ 7.5 करोड़, कोई बोल रहा है 200 करोड़, कोई बोल रहा है 500 करोड़, कोई बोल रहा है उससे भी बड़ा स्कैम है, किस आधार पर? ये तो मतलब मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं. एसआईटी की रिपोर्ट तो किसी ने देखी नहीं है, तो क्या इंतजार करना चाहिए जब तक एफआईआर नहीं होता?
2: तो सवाल उठता है कि जब एसआईटी के लिए अगर इनकी बात को मान लिया जाए और ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने एसआईटी की मांग की थी, तो क्या ट्रस्ट ने किसी पे एफआईआर की थी? तब एसआईटी की मांग की, एक बात. दूसरी बात, मेरी बात सुनिए. दूसरी बात, हमने तो नहीं बोला सिंधी समाज ने जो 200 चांदी की ईंट के बारे में अपनी रिसिप्ट मांग रहे हैं वो तो कोई समाजवादी नहीं. हमने तो नहीं बोला उनको भाई, वो अपनी रिसिप्ट उनको नहीं मिली तो वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना. तो सवाल ये उठता है कि हम तो एक जहां पे एक प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को, इश्यू को हमने रेज किया है. इस बात को वहां के जैसे महंत कमल नयन दास जी भी, आपने ब्रजभूषण सरन सिंह की बात सुनी होगी, कहते मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े लोग हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा. अब जब बोलने को लोग तैयार नहीं है, वैसे तो इतने मजबूत आदमी है वो हर बात पे बोलते हैं, यहां पे क्यों नहीं बोले? फिर नृपेंद्र मिश्रा जी का भी हमने सुना कि भाई कुछ तो खामियां थी, इस तरह का भी उनका आया. तो सवाल उठता है कि जब कुछ खामियां हैं और बात उठी है तो ये जिम्मेदारी ट्रस्ट की बहुत बड़ी हो जाती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि उसका सच सामने आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है. और मैंने तो बोला था सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो तो ज्यादा अच्छा है. हम तो यही कह रहे हैं कि मेरे प्रभु को मानने वाले लोग हैं ना, इसलिए हम ऐसी बातें कह रहे हैं. समाजवादी लोग इसलिए बात को कह रहे हैं कि प्रभु के यहाँ
1: शांति गुप्ता क्विकली रिस्पॉन्ड बिफोर आई ब्रिंग मिस्टर जैन एंड अद्वैता.
2: सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी हो जाए तो
1: शांति गुप्ता, अ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, परहैप्स अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब.
0: For sure, if needed be, if SIT people are not satisfied, if we see the, if the government deem fit, the administration deem fit. See, agar police se jaanch hoti hai, kehte hai, toh SI bitha diya, ye kya jaanch karega? They have put a high-powered SIT. If the CBI is there, the Modi ki CBI hai. So they will find an argument if the report doesn't suit the argument. And also one more point, this should not become a reason for the government control of the temple. Right? Because in South, there are multiple such cases came in the South Indian temples, which are managed by the governments there, right? In Karnataka, in Andhra Pradesh, in Telangana, in Kerala, then many such cases came out where government is managing. So this should not become a case. The process should become robust. SIT should give the ki kaise counting honi hai, kaise receipt milni hai. That process should be rock solid. I'm sure this process is mastered. India is not a country of new temples. We have multiple temples. Bahut sara chadava aata hai, and the process is sorted.
1: And only yet, unfortunately, we had these allegations, Mr. Jain. For decades and decades, there was a campaign. Free Hindu temples from government control.
0: Exactly.
1: Why should the government only control Hindu temples and their funds? But if there is such shoddy management, the government will find an excuse to take control. And how will those funds be used? But effectively, you cannot even accept embezzlement of funds. And when I interviewed Mr. Nripendra Mishra, he did point to certain systems that should have been put in place. Doesn't this... raise that very basic question, why were these systems not in place? Jab itna bada divya bhavya Ram Mandir ban raha tha, to donation ki counting aur management ke liye ek foolproof system nahi bana sakta tha hamara samaj?
3: Trust should have done it. The appointed people in the trust who had been appointed, everybody knows those people. I also knew one or two members. I was close to Raja Sahib Ayodhya also. He was a friend of mine. He's no more. He was also a member of the trust. We had been in touch regarding the affairs going on at the temple. Now I think the wings will be kept off the people who have been controlling things. CEO sort of person will sit there, government appointee. And there are no complaints at

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।